0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: युगंडा में एक बस जिसमें स्कूल के बच्चे किसी सफर से वापस आ रहे थे सड़क से बाहर फिसल गई, जिसके नतीजे में कम से कम 20 बच्चों और एक बालिग की हलाकत हो गई है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ताल्लुकमत कंपाला के किंग डेविड जूनियर स्कूल की बस आज रात गए जिला कापीचूरा के सैपे फॉल्स के स्कूल दौरे से वापस आते हुए सड़क से बाहर जा निकली। पुलिस ने जुम्मे को एक बयान में एक्स पर कहा कि इत्तला के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका, गाड़ी सड़क किनारे पर पड़े एक बड़े पत्थर से टकराते हुए उलट गई। इत्तला के मुताबिक इस हादसे में एक बालिग मर्द तो 20 तलबा हलाक हो गए, जबकि 3 बालिग मर्द तो मुतअद्दिद नाबालिग जख्मी हुए। किंग डेविड जूनियर स्कूल के बानी भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। पुलिस ने एक बुरी तरह मस्त शुदा और उल्टी हुई बस की तस्वीर शेयर की है और कहा है कि तफ्तीश जारी है, जबकि मुतअद्दिद बच्चों और बालिगों को इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। रियासती हुकूमत के वजीर बालाम बारुगा हाराटीनी ने कहा है कि वो वजीर ममलिकत बराए मेहनत रोजगार और सनअती ताल्लुकात सिमोन मोलोंगो के हमराह जख्मी बच्चों से मिलने गए हैं। युगंडा में जानलेवा बस हादसात निस्बतन आम हैं। अक्टूबर में एक हाईवे पर 2 बसों के तसादुम में कम अज़ कम 46 अफराद हलाक हो गए थे। युगंडा पुलिस की सालाना जराइम रिपोर्ट जो मार्च में जारी की गई उसके मुताबिक युगंडा में गुज़िश्ता साल में 26,044 सड़कों के हादसात रिकॉर्ड हुए, जो कि 2024 में दर्ज 25,107 के मुकाबले में ज्यादा हैं।
0: वेनेजुएला में 24 जून को आने वाले 2 होलनाक जल्जों के बाद जानी माली नुकसान की तफसीलात संगीन बनती जा रही हैं। इस आफत में अपनी जानें गंवाने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 4,930 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 16,740 तक बताई जाती है। खत्ते में जल्जे के झटके अभी रुके नहीं। मरकजी जल्जों के बाद अब तक 1,308 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इससे पेशते बताया गया था तबाही फैलाने वाले जल्जे महज 39 सेकंड के वक्फे से 7.2-7.5 की शिद्दत के साथ आए थे। जल्जे के बायस होने वाले फिजिकल नुकसान की माली लागत का तखमीना 6.7 अरब डॉलर लगाया गया है। मुल्क भर में तलाश और इमदादी कार्रवाई बगैर किसी वक्फे के जारी हैं। हलाकतों जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
1: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अबोला वायरस का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है। मुल्क में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 800 के लगभग है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल गैब्रेसियस ने खबरदार किया है कि इस वक्त तारीख की तीसरी बड़ी एबोला वबा का सामना है और यह वायरस उठाए गए हिफाजती इकदाम से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी तरफ इस वबा से मुतासर पड़ोसी मुल्क युगंडा से एक उम्मीद अफजा खबर आई है। मुल्क में जेर इलाज आखिरी एबोला मरीज को हस्पताल से फारिग कर दिया गया है। अगर युगंडा में शुरू होने वाले 42 रोज़ा मुशाहिदाती दौरानिए में कोई नया केस सामने नहीं आता तो मुल्क को बाज़ाब्ता तौर पर एबोला से पार करार दे दिया जाएगा।
0: शंघाई चीन में 29 मुल्क ने आलमी ताउन तंजीम बराए मसनूई जहानत के क्याम के लिए एक वादे पर दस्तखत किए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक चीन से खारजा वांगजी कजाकिस्तान लाओस पाकिस्तान रूस इंडोनेशिया समेत 29 मुल्क के नुमाइंदों ने इस माहदे पर दस्तखत किए। दस्तखत करने वाले ममालक WAICO के बानी मेंबर बन गए हैं।
1: और भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के सफर शुरू कर दिए हैं। यह उन चंद मुल्कों के उन ग्रोहों में शामिल हो गया है जो रेलवे नकलो हमल को कार्बन से पाक करने और फासिल ईंधन पर इन्हिसार कम करने की कोशिशों के तहत इस टेक्नोलॉजी का तजुर्बा कर रहे हैं। यह मंसूबा दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक को जदीद बनाने और कार्बन के अखराज को कम करने की एक वसीतर कोशिश का हिस्सा है। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन भारत के शुमाली रियासत हरियाणा के जुंड और सोमपत के दरमियान 89 किलोमीटर यानी 55 मील तवील रास्ते पर चलती है और ये 1200 किलोवाट के हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से चलाई जाती है।

इदारों ने इस निज़ाम को ट्रेन के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम करार दिया है। हाइड्रोजन ट्रेनें फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा करती हैं और सिर्फ पानी और बुखारात खारिज करती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिन्होंने इफ्तिताही सफ़र का परचम लहरा कर आगाज़ किया, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह खुद मुख्तार भारत और पायदार तरक्की की सिमत में एक बहुत अहम दिन है। वज़ारत रेलवे ने भी कहा है कि यह ट्रेन मुकम्मल तौर पर भारत में तैयार की गई है, अगरचे सीनियर अहदेदारों ने रिपोर्टर्स को बताया कि फ्यूल सेल्स समेत कुछ अहम अज्जा दरामद किए गए थे। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।